सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम को बिहान 6:30 बजे खोज खबर में यहां स्वागत छ। खोज खबर बाट ईश्वर साउद को नमस्कार। तपाई अहिले सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज का साथ ही अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो र नेपाली पात्रोमा पनि सुनिरहनु भएको छ। खोज खबर शुरू गरौं खबरका मुख्य शीर्षकहरूबाट। कृषि स्नातकको अनुसन्धान अभ्यास र सेमिनार गोष्ठी टीकापुरमा जारी। जानकी गाउँपालिकाको 76 र टीकापुर नगरपालिकाको 60% मात्र वित्तीय प्रगति। सरकारद्वारा 7 विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसन देव भट्ट। मनोसामाजिक सेवाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्य आय आर्जनमा जोडिँदै। र जानकी गाउँपालिकाद्वारा 17 जना आयरन व्यवसायलाई आधुनिक उपकरण वितरण।

0: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
1: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बढी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
2: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
1: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार।
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नेछ। याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637072।
4: आओ आओ, तू पायलट से आई ना मत झील कर लो था संजू, कुछ समस्या तो नहीं हुई?
5: कुछ नहीं हुई सर, पायलट के 15 सफर रख लू, डर लग के घूमक रहते हूँ, कैसे चेयर सर लग मत हल्का नहीं कर मोर सब हो गए था पाई ना तो पायलट जा कहीं
4: मोर सब है ना चले ना तो नहीं चलेगा ना
5: नहीं चले ना सर
4: विद्यार्थी भैया बाबू पूरा ग्रहते कह रो मोर सब डेबो कर से भैया ना चलाए नहीं बिठा तब मोला से फिर वाकर मरहल 20 असर नहीं करत खाना नहीं हो जीती हाँ मुआल सप्पा मुआल देख पड़ना सप्पा है ना नंता हाँ साले पकड़ा नहीं भी
5: सर नौसप्पा देखना से क्या करना
4: सप्पा मुआल उस देख पड़ना से थे जाग से मुआल नहीं रह सकत अथवा मुला कुछ देर पास आसम थे सप्पा दस सकत वह वर्षे मुआल अब थमा थे सप्पा हाथ से चलाई नहीं भी जेंटन इतना माल अच्छी ले चला था मुआल नहीं मुआल कैसा जाना से भी था
6: मुआल सापन से सावधान रही मुआल वा मार गई सप्पा है ना पकड़ना वा खेलेना जिन करी मुलक कुछ बेर बासा संकी सप्पा दस सिठा संभव हुई सम सप्पो फोटो खींची व पहचान कलाक विज्ञापन से संपर्क करी
7: सर्पदंश से संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केंद्र कहाँ बाकी था पता मेरे लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सकता
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

सुनार फोन नंबर 9988 14 799 9884 25 32 अछाम मंगलसेन का लागि धूप सिंह सुनार गोपाल सुनार फोन नंबर 9884 68 25

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा था
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिपटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लगाती ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर रामप्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
4: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
4: स्वास्थ्यका लागि पानी
7: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
8: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
7: ए हो त कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
8: कहाँ हुनु भाइ टीकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
7: अब त म ढुक्क
9: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
8: मोबाइल नम्बर 9848513326 जमरापारी टीकापुर कैलाली
10: मे आई कम इन सर
11: आउ आउ तिमी टोयलेटबाट आउन त ढिला भयो नि सन्जु के समस्या भयो र
10: केही भएको छैन सर टोयलेटको छेउमा सर्प देखे डर लागेर फर्किन लागेकी थिए एकछिनसम्म कुर्दा पनि हलचल गरेन मरेको सर्प रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि टोयलेट गएर आए कि
11: मरेको सर्पलाई चलाउन त चलाएनौ नि
10: चलाइन सर
11: विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिमीहरूले पनि कहीँ कतै मरेको सर्प देख्यौ भने त्यसलाई चलाउनु हुँदैन है सर्प मर्दैमा त्यसमा भएको विषले असर नगर्ने भन्ने हुँदैन जिउँदो मरेको वा मरेको जस्तो देखिने सर्पलाई
12: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

सामुदायिक रेडियो टीका आफू एफएम के बिहानिक 9 बजे थारू भाषा के खोज खबरमा अपनीहरुको स्वागत बा खोज खबर सेमै सीता चौधरी के राम राम आफ्नो युक्रा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइनमा www.tikapureFM.org मोबाइल हाम्रो पात्र ओ नेपाली पात्रमा फेरि सुन्टिरहलबाटे खोज खबर सुरु गरे खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से कृषि स्नातक के अनुसन्धान अभ्यास तथा सेमिनार गोष्ठी बैटरी बस दुर्घटना घाइते की संख्या 24 पुगल 22 जना धनगढ़ी रेफर देशभर

0: विद्यार्थीको आफ्नो अनुसन्धान प्रस्तुत कलबाट पहिलो दिन नेपालकी कृषिमा रूपान्तर वा अबकी गन्तव्य विषयमा नकरकाकी वैज्ञानिक डाक्टर रोशन बाबु ओझा कार्यपत्र प्रस्तुत कलबाट प्रधान अध्यापक डाक्टर हरिकृष्ण पन्त नेपालकै पश्चिम तराईमा मसिर किबी उत्पादनमा लग्न लागत बजार नाफाकी अवस्थाकी विषयमा अनुसन्धान कार्यपत्र प्रस्तुत कलसेफी मध्य कृषि विश्वविद्यालयकी उपप्रधान अध्यापक डाक्टर मोहम्मद इक्राम हुसैन दिगो खाद्य कोषी बाली उत्पादन केलाक रोगको किराकी सामना गर सिक्ना नयाँ उन्नत जात विकास गर्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत कलबाट गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकी उपकुलपति प्रधानाध्यापक एगेराज पाठक कृषि विज्ञान संकायकी पूर्व डीन डाक्टर विष्णु विलास अधिकारी सुदूरपश्चिम प्रदेशकी कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयकी सचिव शंकर शाह टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसकी प्रमुख धविन्द्र रावल दुर्गालक्ष्मी बहुमुखी क्याम्पसकी प्रमुख डाक्टर नरेन्द्र एर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीकी हिम्मतराज उपाध्याय टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसकी सोभवी सभापति किरण साउत लगायत बोल्न रहे गोष्ठी दुई दिनसम्म चल्नमा कार्यक्रम कृषि तथा स्रोत व्यवस्थापन विषयमा तयार कलक जनरल सार्वजनिक करिलबा स्कूल अफ एग्रीकल्चर के प्रमुख संजय राउत की अध्यक्षता में हुए उद्घाटन सत्र के संचालन प्रेम भंडारी कलबाट बैटरीमा हुलक बस दुर्घटनामा घाइते हुलक 22 जना उपचारकी लागि धनगढ़ी आइलबाट शुक्रबार दिनकै 7 जना घाइते हँ धनगढ़ी दनलक रातके थप 15 जना उपचारकी लागि धनगढ़ी आइलक प्रहरी जनिलबा प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार उहाँको रातके धनगढ़ी उहाँलाइलबाट घाइते मध्ये एकजना फेरि डडेलधुरामा उपचार पाछा डिस्चार्ज हुलबाट धनगढ़ीमा से छुटलक सुदूरपश्चिम यातायातके सुपम्प प्र 01003963 नम्बरके बस दशरथ चन्द राजमार्गमा गुर्ती रहल बेला पाटन नगरपालिका आठके गैराखानमा दुर्घटना हुइल रह दुर्घटनामा चालक पाटन नगरपालिका के तीन बैठना 25 वर्षीय दिनेश भाट सहित के 24 जना घाइते हुइल रहे उहाँहरूको मध्ये दुई जना के अवस्था गम्भीर बा बस जेसीबी बोक्ना टेलर साइड दिनाक्रम सड़कमा से खसलक पैलक प्रहरी जनिलबा प्रहरीके अनुसार धनगढ़ी रेफर कलक 22 जना घाइते मध्ये 14 जना के माया मेट्रोमा उपचार हुँदै रहेछ फेरि थप 2 जना माया मेट्रोमा लन्टीबाट अस्तका 4 जना केयर टेकर अस्पताल 1 जना सीपी अस्पताल तथा थप 1 जना के अतरिया अस्पतालमा उपचार हुइरहल्बा बैटरी प्रहरीके अनुसार 1 जना डरेलधुरा अस्पतालमा रहेछ फेरि बैटरीके दशरथ चन्द नगरपालिका वडा नम्बर 4 साहिलेक खरुलक 21 वर्षीय सागर ठगुन्ना दिशा छुलबाट हाल देशभर मौसमी वायुकी प्रभाव प्रहलवा वकर प्रभावले हाल कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारण बदली लग्नबा तथा मध्य प्रदेशमा आंशिक बदली लग्नबा बागमती ओ लुम्बिनी प्रदेशकी कुष्ठामा तथा कोशी गण्डकी कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी एक दुईठामा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षा हुइरहल्बा आज दिनकै हिमालय पहाड़ी भागकै साधारणतया बदली लग्नबा तराई भूभागमा आंशिक बदली लग्नबा देशकी हिमाली भूभागकी कम ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकी सम्भावना बा गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी पहाड़ी भूभागकी कुश तथा कोशी ओ बागमती प्रदेशकी पहाड़ी भूभागकी कम ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकी सम्भावना बा लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी तराई भूभागकी कम तथा मध्य प्रदेशकी संघ कोशी बागमती ओ गण्डकी प्रदेशकी तराई भूभागकी एक दुई ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकी सम्भावना बा आज रातकै गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकांश बदली लग्ना कोशी मधेसो बागमती प्रदेशमा साधारणतया बदली लग्ना बा देशकी हिमाली भागकै कुश तथा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकी सम्भावना बा गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहाड़ी तथा भूभाग तराईकै धेर ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकी सम्भावना बा कोशी मधेसो बागमती प्रदेशकै पहाड़ी भागकै कुश तराई भागकै कम ठाउँमा चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षाकी सम्भावना बा गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै पहाड़ी र तराई भागकै एक दुई ठाउँमा भारी वर्षाकी सम्भावना रहल्बा खोज खबरमा एक घरी विश्राम विश्राम पाछा फेरि सेबी सुनतिर विश्व सामुदायिक रेडियो टीका आफ्रो एफएम
1: चुरे जोगाउ पानीका मुहान बचाउ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौं हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व।

0: हो, समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा। कैलालीकी जानकी गाउँपालिकाकी चालू आर्थिक वर्षकी वित्तीय प्रगति 76.72% हुँदा असार 19 गतेसम्म पूँजीगत खर्च गरी 53% हो। चालू खर्च 87% हारीमा फुगलक जानकी गाउँपालिकाकी लेखाधिकारी दिनेश माथि जानकारी दिलबाट चालू आर्थिक वर्षकी अब यहाँ असार 25 गतेसम्म केही खर्च उठेन पैना व्यवस्था रहलबा आफ्नो ती मोहर भारी योजनाकी भुक्तानी दिन बाँकी रहल कारण 25 गतेसम्म जानकी गाउँपालिकाकी करिब 80% से ऊपर खर्च हुना आकलन कलक लेखाधिकारी माझीके कहाइबा। जानकी गाउँपालिकाकी वित्तीय प्रगति 76% पुगलक। टिकापु नगरपालिकाकी वित्तीय प्रगति 60.13% के हुँदा ओमा चालुतर्फ 72.66% हो। पुँजीतर्फ 38.64% खर्च हुल्बा। असार 19 गतेसम्म के अवस्था हेलक अनुपातमा 60% वित्तीय प्रगति हुलको यहाँ अवस्थामा हेलक टिकापुर नगरपालिकाके चालू आर्थिक वर्षके वित्तीय प्रगति 65% हुलक हुना आकलन कर्लक टिकापुर नगरपालिकाके लेखाधिकारी लक्ष्मी वर्ड बोटिलोबाटी अब फे कार्यालयमा भुक्तानी केला धेर फाइल ऐटी धल्तर सफ्टवेयर सुस्त हुलक काममा कुछ ढिलाई हुटी रहलो। असार 25 गते रातके 12 बजेसम्म हुले सेफे सक्कु कामके भुक्तानी गर्न लेखा अधिकारी ओटके कहाइबा। टिकापुर नगरपालिका हो जानकी गाउँपालिकाकी वित्तीय प्रगतिके तुलना कलक टिकापुर नगरपालिका जानकी गाउँपालिकाकी वित्तीय प्रगति 16% से बढ़ी हुलक। देखिल्बा नेपाल सरकारकी वित्तीय कार्यविधि अनुसार असार मसान्त सम 7 दिन अर्थात 1 हप्ता घनै सरकारी खाता बन्द गर्न पर्ना व्यवस्था बा। यस वर्ष असार महिना 32 के हुलक असार 25 गते रातके 12 बजेसम्म सरकारी खातामा से खर्च गर्न अर्थात भुक्तानी दिन पाइना हुलबाट। सरकार देशके 60 विश्वविद्यालय नयाँ कुलपति नियुक्त कलबा। कुलपति समेत रलक प्रधानमन्त्री बालेन शाह खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत छनौट हुलक। 7 जना शुक्रबार उपकुलपतिमा नियुक्त कलबाट नियुक्त हुनामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डाक्टर भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किशन दत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कटेल, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयमा श्याम नारायण लाल, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजन बाबु मरहट्टाबाट उपकुलपति छनौट केला। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल संयोजकत्वमा सिफारिस समेत गठन गरिदिल रहे। उहो समितिकै सिफारिसका आधारमा कुलपति समेत रलक प्रधानमन्त्री शाह 60 विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति कर्लबाट। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकै उपकुलपतिमा नियुक्त हेलक किशन दत्त भट्ट इन्च्यागा शिक्षा क्षेत्र संघ विश्वविद्यालय प्रशासनमा फेरि सक्रिय रहटी हेलक व्यक्ति रहलबाट। खोज खबरमा फेरि विश्राम पाछा फेरि सुन्तिरवि सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
4: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
5: मै नै जाइ, उहाँ आफ्न अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकर्छु।
4: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, यी पत्रिकामा लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद गर्बी मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया पोटो डन्डीफोर दाँत खुजली भुटला झर्ना कपारके तालु खुल्ना डेन्ड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाउ खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
1: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण जैविक लिंग लैंगिकता यौनिकता लाञ्छना तथा भेदभाव सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम शुरू हुई इन्द्रेणी सृजनशील समाजकै आयोजनामा कार्यक्रम हुई संस्थाकै अध्यक्ष दिपेन्द्र चौधरीकै अध्यक्षता महिला कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि वडा नम्बर 4 के वडाध्यक्ष लालवीर चौधरी रहे। कार्यक्रममा स्वागत बंशीराम चौधरी कल्ल रहे। कार्यक्रममा रामेश्वर महतो रामचन्द्र चौधरी दिपेन्द्र चौधरी सहजीकरण कल्ल रहे। कार्यक्रम संचालन जगत भण्डारी कल्ल रहे। साबिक विजेता अर्जेन्टिना के केभ हडेल प्राधिकृती फिफा विश्वकप 2026 के अन्तिम स्वरमा प्रवेश कलबाट अमेरिका के मियामी खेल मैदानमा भर्खर सम्पन्न राउण्ड अफ 32 के खेलमा अर्जेन्टिना के फडेस के उपर 3-2 के जीत निकर्ती विश्वकप के अन्तिम स्वरमा प्रवेश कलबाट खेल के 2900 मिनट के कप्तान लियोनल मेसी गोल करते अर्जेन्टिना पहिलो अग्रता दिल। अर्जेन्टिना के खेल पहिलो हाफसम 1-0 गोल के अग्रता बनेल रहे तर खेल के 59 मिनटमा के भर्डे के डिरोयो डुआर्टेल के गोल करते खेल 1-1 गोल के बराबरी लन्ल। खेल के निर्धारित समयमा 1-1 के बराबरी हुई पाछ खेल अतिरिक्त समयमा धेकेल रहे। अतिरिक्त समय के दोस्रो मिनटमा अर्जेन्टिना अग्रता लिएर रहे। अर्जेन्टिना खेलाड़ी क्लिसान्ड्रो मार्टिन्जेल गोल कलक अकर पास थप कलक अतिरिक्त समय के 11 मिनटमा पाछ सिन्डेनी लोप्स क्याफ्रोबल उत्कृष्ट गोल कर्ति केट फडेल दोस्रो चो बराबरी लौटेल तर खेल के 111 मिनटमा के फडेल के खेलाड़ी डाइनी बोर्जेस आत्मघाती गोल करल पास अर्जेन्टिना के जीत सुनिश्चित रहलवा। ए समाचार संघ खोज खबर बराइल जेनासी पहले खबर के मुख्य शीर्षक फिर से एक चो कृषि स्नातक के अनुसंधान अभ्यास तथा सेमिनार गोष्ठी बैजडी बस दुर्घटना घाइते की संख्या 24 पुगल 22 जना धनगढ़ी रेफर देशभर मनसूनी वायु के प्रभाव कुछ प्रदेश में भारी वर्षा के संभावना ओके भडेस के ऊपर कठी जीत निकर्ती अर्जेन्टिना अंतिम स्वरमा लीटा बक्ला खोज खबर तरह प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डेटी अबक्ला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदाई टू एक पाछ 12 बजे के खोज खबर सुन सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
7: टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना टीकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालयको आर्थिक वर्ष 2082-83 भएको सेवा प्रवाह सम्पन्न आयोजना कार्यक्रमको बारेमा सार्वजनिक सुनवाई हुने भएकाले टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिहरू उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू वर्गहर सामाजिक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू समाजसेवीहरू लगायत सरकारवाला सबैलाई वाड़ाको काम र सेवा प्रवाहका बारेमा प्रश्न सुझाव गुनासा र सल्लाह सहित सहभागिताका लागि अनुरोध गरिन्छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 21 गते समय बिहान 8 बजे स्थान सिटी हल टिकापुर नगरपालिका एक नम्बर वाड़ा कार्यालय।
8: टिकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
9: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना।
1: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन अर्याल एमबीबीएस न्याम्स
2: यही असार 20 गते शनिबारका दिन
1: रिमाल मेडिकल हल टीकापुरमा आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
0: मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू जस्तै बेला बेला मुटुको गति बढ्ने, हात खुट्टा काम्ने, झमझमाउने, धेरै पसिना आउने, एक्कासी बेहोस हुने, डर लाग्ने, मनमा छटपटाहट हुने, धेरै झस्किने, तर्सिने वा डराउने, असामान्य रूपमा धेरै टाउको दुख्ने, धेरै रिसाउने, जीव दुख्ने, मांसपेशी वा हात जोर्नीको दुखाई, दुब्लाउँदै जाने, कामकाजमा मन नलाग्ने, दिक्क लाग्ने, बेला बेला बेहोस हुने, नराम्रो सपना देख्ने, घाँटीमा केही अट्के जस्तो लाग्ने, छातीमा असजिलो महसुस सुने वा मन स्थिर नहुने, कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने, आत्मगलानी हुने, एक्लै हाँस्ने, मुस्कुराउने, बरबराउने, छारे रोग, मिर्गी रोग, रातिको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्ने, लागू पदार्थको सेवन धेरै गर्ने, बच्चा तथा वृद्धहरूको व्यावहारिक समस्या, ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने जस्ता समस्या भएका बिरामीहरू सम्पर्क गर्नुहोला।
1: सम्पर्क रिमाल मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली
2: डाक्टर आउने दिन असार 20 गते शनिबार।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-267, मोबाइल नम्बर 98-25-69-13-75 र 98-046-71-598।
3: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।

0: तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराई दा
2: मुस्कान रिथाई घरक भिटा आमी निके निउराई छकी का खेतो मस्ता खारन कला मिनी ले जाई पना रह
1: आबे उराई दा जानती बादा
2: ले ले मोर मिनी बना कर दे दिया तू लई दा दिस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ बिटा मत दिला को बा माटी से सब दिए पड़ल टीका हाँ सब दियो। अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मत से मुस्कान मत सब का डरलस लेव हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपवा करलस कल
3: ना क्या काकी तो मुस्कान निया क्या का स्थान थको बैठो ना बेन काकी मुस्कान न स्वास करना सुटाई हलचल निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास का सुटो ता
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकल जैना मेकअप फाफर बना रही वो हाथक चुड़िया की निकाल दी था वाकर कटला हाथ भर नहीं चला था
2: बैठा भैया सब को कटला था और आंदर पांदर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सब को कटला था आंदर पांदर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सब को कटला था मर लगा दियो तो ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लिखाए कहीं तो झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाए दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमारे गाँव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर थकाई का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम डाटा हम कह कर हेरा पड़ल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंशक उपचार कई जिना रही हो वहाँ ले जाए पड़ल मुस्कान हमें
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
3: लो लो लो काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही खड़ा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कल से मुस्कान हना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौन सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबो काल मोल के खा समझ साफ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से भूख सपो विषाहर अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से दिल कल से सपो डसलक मन यहाँ बचाई से दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सकती था सपा दसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको पहिलो दोस्रो र तेस्रो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ। ससानो कुरामा तनाव हुने, बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने, कुलटमा लाग्ने, छटपटी हुने, मुटु धेरै ढुकढुक हुने, जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 20 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नुहोला। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झले फटाका आजी था, काकना हो काकना हो। बाबा के ओस्ट पाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर भर आई थी रहत।
0: का हुई? कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था?
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ हो टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: बाबू ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरो शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कै समस्या यो टीकापुर मा पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भाई मत अब
4: भाईलाई थाई रही ना चा बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकिल लगाए सोलर इन्वर्टर में लगने बैटरी पनी सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनी पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरा पारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
5: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनी को 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पो मा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
6: हामी कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रान्ड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबी मा लाग्ने सम्पूर्ण साइज का टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
4: संपर्क नंबर 0915604670 र मोबाइल नंबर 9848518 28

0: कापिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गोर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल हेरे थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनंद झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकला झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: नाता छ वा साँप कुछ नि कराइ सम साँप कुछ नि करत ल्या ऊ अपने चल गेल त कुछ कराइल त ओ सक्कु साँप बिखा थे नि रट
1: बिखा हो कि नि हो कसी कति हिँडा त दाई
2: ल्या नेपालमा पाजिना बिखा साँपनको विषयमा सुन एक ठोर ठ गरै जोन खास कै ख रातिक समयमा घर भित्र पैठा सेक्ठ यी कटलसे निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कै ख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्क होइ सेक्ठ और रठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाट फुले थ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कै ख सन्ध्या बिहान देख पर्छ निकर कटलसे फे लक्क होइ सेक्ठ ओ और रठ कैली जातक साँप निकर कटलक कलसे कटलक भाग सुई था ओ बडा कर्रसे बठे था रगत फे पाची होकर रगत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सक्कु भूभाग में पा देना बगोकने न फुनकारना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिंक न कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बर्खा छा को अनाज बिजीना समय में सापन का कटाई अथवा जसाई का घटना झूर मिना कथा बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप का कारण सापन का बचारा नाशिबे सापन का जसाई का घटना झूर मिना कर लग पा दे
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नी रहा वह फिर यदि सपा दस डाल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
0: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना
7: काठमाडौँ पाटन अस्पतालका मानसिक नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर सुमन नरियाल MBBS NAMS
8: यही असार 20 गते शनिबारका दिन
7: रिमाल मेडिकल हल टिकापुरमा आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
6: मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू जस्तै बेला बेला मुटुको गति बढ्ने हात खुट्टा काम्ने झमझमाउने धेरै पसिना आउने एक्कासी बेहोस हुने डर लाग्ने मनमा छटपटाहट हुने धेरै झस्किने तर्सिने वा डराउने असामान्य रूपमा धेरै टाउको दुख्ने धेरै रिसाउने जीव दुख्ने मांसपेशी वा हात जोर्नीको दुखाई दुब्लाउँदै जाने कामकाजमा मन नलाग्ने दिक्क लाग्ने बेला बेला बेहोस हुने नराम्रो सपना देख्ने घाँटीमा केही अट्के जस्तो लाग्ने छातीमा असजिलो महसुस सुने वा मन स्थिर नहुने कुनै पनि कुरामा मन नलाग्ने आत्मगलानी हुने एक्लै हाँस्ने मुस्कुराउने बरबराउने छारे रोग मिर्गी रोग रातिको समयमा धेरै मदिरा सेवन गर्ने लागु पदार्थको सेवन धेरै गर्ने बच्चा तथा वृद्धहरूको व्यवहारिक समस्या ओछ्यानमै पिसाब फेर्ने जस्ता समस्या भएका बिरामीहरू सम्पर्क गर्नुहोला
7: सम्पर्क रिमाल मेडिकल हल टिकापुर एक कैलाली
8: डाक्टर आउने दिन असार 20 गते शनिबार
7: सम्पर्क नम्बर 091-5260-267 मोबाइल नम्बर 98-25-69-13-75 र 98-046-71-598

0: आइहो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का?
0: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना, वट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो होना कबू कहूँ घूम जाए था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरगी उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज भाग कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
4: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
4: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
7: बेचेर सपना मैले रात किनेको छु, बेचेर सपना मैले रात किनेको छु, होस लिलाममा राखी माथ किनेको छु, होस लिलाममा राखी माथ किनेको छु।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजि ठ का कना हो बाबा के ओस्ता पाटिन गतिलो ठाउँ से झला अनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो इ बुढा लिख में का हुई थी जरम भर भर बरैती रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झलै फटाका ठ बढ़िया ठाउँ से झला लान नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम ठ
0: कहाँ से लन बो ओटा का हो टीकापुर म रलक रट गे या झला उडोक म से वहा झिंगलान दिदी कटरास गोर झला अनला बाटी ना कबु लड़का का पिएरै ना कबु पेन्सिल रहिथिन ना झोला फाटल हुइथिन कहियक आनल झोला जसका टस बाटिन यी बुढो ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याको ठुइ
1: ल्याल्या मैं अब भी जाइबू रतगैया झोला उद्योग में
2: रतगैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक सौ सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
4: भ्रष्टाचार करो या मनन खुलके विरोध करी भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी अपराध दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: सापन र कटाई से भइसकेका मानवीय एवं शारीरिक क्षति विरुद्ध आम संचार अन्तरक्रियात्मक रेडियो केन्द्रित अभियान जीवन सन्देश
1: नमस्कार सर्पदंशले भुइँसेक्ना मानवीय एवं शारीरिक क्षतिकृत जनचेतना जगेना उद्देश्य लिएर अन्तरक्रियात्मक रेडियो कार्यक्रम लहर जीवन सन्देशमा आपुलाई स्वागत बा मै पुष्पा
2: ओ मै एकराज आज कार्यक्रमको चौथा पैठार आज हाम्रो सर्पदंशले बचतला काम गर्ने हो राठिक समयमा का कसिन सावधानी अप्नाइ कठा कना विषयमा संवाद गर्ने बाटी
1: विशेष गरी राठिक समयमा भुइँसेक्ना सर्पदंशन जोखिम ओ बाँचकलाग अपनाइपर्न सावधानी विषयमा हामन सर्पदंश विज्ञ डाक्टर केएन पौडेल जानकारी दिनेबाट
3: सकेसम्म बाहिर जाने काम खेतबारीमा गर्ने काम चाहिँ दिउँसै पर्यारोपर्नुभन्दा पहिला नै सिद्धाएको राम्रो हुन्छ आँखाले स्वस्थ देखिने काममा नै ठाउँमा समयमा नै आफ्नो कामहरू सिद्धाएको राम्रो हुन्छ
2: सँगसँग सर्पदंश से बचकलाग राख ओ कामको न समयमा अपनाइपर्न सावधानी विषयमा जानकारी दिन बिन्दु हो होम कुमार बटकोइक चौथा पैदा शून्य बाटी
4: गोबर चाहिँ त अनाज भण्डार गर्दा कोठा ओ काठी धन्दा ठाउँ ओ बिलामा साम बैठल रहेछ हाम्रो होसियार रह पर्था ओ जुत्ता लुगा भन्दा च्याके मजासी जाँच गर पर्था जेहीले करबे सर्पदंशले बच सिक्दै
1: निचलाख डुरहे रलसिए सर्प हमन निडस्ट बिन सर्प हमन से डरैठ यदि हाम्रा जानख निजानख सापन चरेली अथवा जिस्केली कलसेवर प्रतिरक्षक स्वरूप आपन बचाउ करकलाग साप हमन डसुया होइट भुक्रा आहार खोजीमा बाहिर निस्कल ब्यालामा घाँस काटबेर ख्यालबेर न्याङ्गबेर छुगैलन कलसे मनै आक्रमण गर लगलक समझक प्रतिरक्षा गर्न क्रममा साप डस्न गर्छ
2: वाकर अलावा साप हमन क्षति पुगै किका कना समझक हाम्रो सापन डेक्टिकी मार सहटिठी ओसी करबेर फेर साप हमन डस्न गर्छ आफन गाउँठाउँ समुदायमा पाजेना सापनको विषयमा हामन जानकारी फी पठा ऊ साप कसिन कसिन ठाउँमा बैठ कुन कुन ब्यालामा बाहिर निस्कठ कुन छ्यापमा झुस सक्रिय रह कना विषयमा थाहा पहिले रह पठा हाम्रो हाम्रो घर आन्दर पान्दर रहल साप आकर्षित हुन ठाउँ व्यवस्थापन समयमा जो कर पठा
1: साप मुखकरण हुला पर्छ आफन घर हो खेल मैदानका आन्दर पान्दर सड्ड सफा बनाइल रह पठा छपास पठा हिला हो पटकोही खुरा हटाई पठा कलसे काठी पैरा ओ सुखल घाँसक सही व्यवस्थापन गर पर्था रुखवा अथवा भुइँमा रहल फुवाउ अथवा बिलमा जथाभावी हाँड गुवास निहु
2: राठिक समयमा कामको नजारामा हाम्रो कसिन कसिन सावधानी अप्नाइ पर्था आफ्नो कुशकर शिक्षित सापनको जोखिम रहल ठाउँमा काम गर दिनासी आग कहाँ गर पर्था
1: एकराजी आफ्नो जिज्ञासा जवाब दिनासी आग हाम्रा श्रोता सहभागी नक प्रतिक्रिया सुनिन उहाँको आफ्नै लग सावधानी ओ मोहना ठा हुइलकबाट तालमेल कत्ता मिल्था उफे हेर्वी हाम्रो कुछ श्रोता सहभागी रातिक समयमा ओ काम गर्न ब्यालामा सर्पदंश से बच आफ्नो कसिन सावधानी अपनै नाकर ठिक ओ कहाँ कर कैछ पुछल बाटी
5: मुहार नाउ राजु चौधरी हो बाह्र बर्दिया डस मेरैया पराइट इफ्टर रहल ठाउँमा साँप रठका हुँ मैनके बैठना जुर ठाउँ के ऊ आजकल इट्टा नि आजकल जुर रह मुसनके बिलमा डसै घरके देवाल वाल जोड्लक चिरारमा अष्ट अष्ट ठाउँमा नै साँप रठ आज हाठमा लाइट लेके निक्र परल कहुँ लट्ठी अट्ठी लेके निक्र साँप डबरीमा न भ्याँ ठोगिल कलसे अब ढपाइ परल नै ढपैलासे ठाउँतिर काट्दो रहे नि सुरौँ त दबाई वाई छिटो परल कहुँ अलि घर आँगन सब सर सफाइ गर परल झोल ओल लगाएके सुत्ना न्याङ्ग घुम गएर आजकालिक दिनमा त बुरजुट्टा रहेछ एकदम मजा
6: धनीराम थारू हो बासे गरी हो भित्र ही रहते नहीं बिले मत रहते पानी परत तब निकलते हैं पूरे बाहर कटकौरा मारा था जोहर सैला हुई है पानी परत तब निकलते हैं पूरे नहीं यार और बाहर मोबाइल बाबा मोबाइल बार के निकलबो
7: मुनु मिहिलाल हो जगतपुर बरहियाटल गांव पलका पथम रहते हैं इतम रहते हैं सब दर्जा आगे दर्जा बड़वटम पाथे से निकलती हो के साफ करे के हर मिनट होती जब होता अरे लट्ठी लेके कछु निकले पड़ल कहुँले
8: मो नाउँ रामु थारू हो मतिरिया गाउँ हो मोर वर नम्बर चार परस बथुवा बाँसगढी नगरपालिका साँप खसे यी जस्तै कि हाम्रो कच्चे इँटा देवाल उठैबो ऊ चौरमा रथाए जब ऊ चौरमा रही त अब पानी बर्सी ऊ एकदम फाफ मारी

0: आफ्नो घरमा जुन सवारी साधन बा अथवा आफ्नो घरमा नै हो कलसी लगभग जुन सवारी साधन मिल्था मोटरसाइकल काकरणी भए सबसे पहिला लगभग सर्पजंश उपचार किर्म लगिना सप्प काडारण कलसी नियक्ता ख सहसा वाहनको स्याकलसम सर्पजंश उपचार केन्द्र जहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूकोबाट उहाँ स्याकलसम कसैको झट्ट पुग सिक्न कना सोच विचार कि एक घण्टा भित्र पुग सिक्लसी सबसे मजाले छ ओ यी बीचबाट बहन्न पत्तीले चिर्न बिख निकर्न असिन काम पेख समय बर्बाद निकाल्ला मै सबको झन्से अर्जी करटु यहीले समय के बर्बाद मिठा ऊ समयमा बेन आफन सबसे लगभग जौन सवारी साधन वा उहीले स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सिद्धी ठाकरसित सर्पदर्श उपचार केन्द्र जो गेल मजा उहाँको सापनको विवाह कति रह उहाँ जहिले सपनको काट्दैन उपचार मजा मिठा निश्चित दिन कलस फे मजा स्वास्थ्य संस्थामा जाइक
1: गरिरहनु भएको छ सकिएन भने पनि राम्रो चिकित्सा भएको ठाउँमा जाने सल्लाह
2: गुरुवा वैदवा छाटफुक कलक फे सुन्जिठा ओसिन चलन फेवा असिन वक्रकलाक अप्न सल्लाहका बा
1: हजुर हजुर अफिसको समय अघि पनि भनिहाले हाम्रो धेरै जसो सर्प विषालु सर्पको
0: हजुर हजुर मैटमले फेरि कहिरहनु कि ढ्युर जसिन सपनको कटाई विषाह निरहत ओ से ढ्युर हाम्रो डाडो भैया दिदी बाम्बु र ब्रह्मपथ फेरि मै झारफुकै चोखिनु महिना बिस नि लागल गुरु फिजा चोखिनु कहिले कठ जस्तो दस जना गैडा कलसी उहाँको ठिक हुई ठ काकरा कलसी उहाँको विषाह साफ कटल जस्तो हाम्रो अस्पतालमा अहिले बिरामी थिए बिस निरलक सप कटलक बिरामी त बिना बिना कहिले घर दिए अस्पतालमा अहिले बिस निलाग बिरामी थिए हाम्रो झारफुक कहिले ठिक पर्ने कहिले गएछ उहाँको भरमर ठ दस मध्ये दुई तिन ठोकेल विषाह ठ ओ वर्षे सप कटलक मनिया झारफुक कहिले ठिक हुई फल्ना मनिया फिर झारफुक कहिले ठिक हुई मै फिर झारफुक कराउँ कहिले समय बर्बाद गरौँ झट्ट से झट्ट अस्पतालमा ल्याउन मै सल्लाह दिए
1: लगभग असम्भव हुँदैन त्यही भएर हामी चाहिँ सकेसम्म धामी जाने नगइकन स्वास्थ्य संस्थामै जाने सल्लाह दिन्छ
3: राति समय हो काम गर्न बिहानमा गइसक्न सर्पदर्शक जोखिम हो वाचकलाग अप्नाइ पर्न साप्ताहिक विषय म हमन बुझाडेलक म सर्पदंश सम्बन्धी विज्ञ डाक्टर केएन पौडेल प्रति आभारी बाटी
4: दाई नाच बा कहाँ जाइ लग्दो त
3: के सब लाग्ता चर्पी जाइ टुका
4: ए रुको ना त कोसिन हो कला छे मै टर्च लाइट वो लट्ठी दिए टु लेख जाओ
3: काचे चुनु लट्ठी वो टर्च लाइट
4: का कर रही दाई राति बेला बाहे निक्ल पर्ला छे वा टोयलेट जाइ पर्ला छे जहिया फे टर्च लाइट बार ख को लम्बा लट्ठी लेख के हो जाइ पर्छ का कर कि बर्खा छ्याक बा साप रहसे ठ टर्च को अजाले सापन ल्या खसे दैथा वो लट्ठी ठ्याक ठ्याक आवाज सुनख साफ भक्त का
3: हो कतरा मजा सल्लाह डेली मार छोटकी छाई
4: दाई हम ना स्कूल मैडम सर मुख साप मुख से ठाव से न्याग पड़ला से वो काम कर पड़ला से जहा फे ठप होशिया विपथा गई सीखेल बाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा झ्यांगा चलक ठाव में न्याग पड़ला से लम्बा लट्ठी देख ठ्याक ठ्याक बजेटी न्याग पठा गई कल बाट
5: सात वर्ष छ्याक समयमा सुक्खा ठाउँमा बैठ मन परेछ यी मौसममा आफन बस्यारामा पानी पैसा बिलकोर्से सुक्खा ठाउँको खोजीमा उक्रा बाहिर निस्कठ
6: मुस मुर्गी जसिन आहाराको खोजी गर्न क्रममा फेर साँप मानव बस्ती लग्न आइसक्छ
3: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहेसेक जिठा
7: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
8: आज हाम्रा सर्पदंश से बचकला काम करबेर हो रातिक समयमा काकसिन सावधानी अप्नाए पठाकना विषयमा संवाद कति बाटी आवश्यक श्रोता सहभागिनका विचार ओ सर्पदंश सम्बन्धी विक्रेता प्रसे कलक बातचित सुन्दी
3: अठा बेलाभर बिन्दु होम कुमारका बटकोहिक चौथा पैढार सुन्न बेला फिल्वा सर्पदंश सम्बन्धी जनचेतना फैलिन अभियानमा सक्रिय बिन्दु होम कुमार आर्थिक भागमा हवन सर्पदंशक बेरमिहन शान्त बनैला रह पर्ना हो बेरमेहन कुचुफिया खुवाई निविट कना बाट सिखैल रह उवर्षीय साँपक डसला खाउन स्थिर बनेला रलकसँग बेरमेक डेहीमा रहल टम्म कस्कैलक लुगा पेटी मुन्द्री खरी खोल्क फाँफर बनाइपर्न बात फे थाहा बोली
8: हाम्रो लुगा वा जुत्ता भन्न स्याएर जाँच गर्नुपर्ना सन्देश फे नाटकको आगक भागमा सिक्लबाटी उसरी ख सर्पदंश बेरमे मोटरसाइकल वा और झट्टै उपलब्ध हुन सवारी साधनमा सहजिल से धाइख जत्ता स्याकल झट्टै लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्रमा लैजाइ पर्न सन्देश फे नाटक व्यदन म्यालोमा पुख बिन्दु होम कुमार आज काका कर्थ थाहा पाइक्लाक हाम्रो फेरि उहाँ अङ्क रक्षण जयनाथ
9: राजीव मोटरसाइकल एकछिन धरि जानि है म्यालोमा त बडा भिड बा
10: उठा रन्दनी खाली ठाउँ फेराइछ
9: उठा उठा राजीव मै उठ्छु हाँ ओहो झपास फेराइछ यहाँ त
10: अँ झपास हो नजाऊ न म यही बाइक पार्क गरेको छु यहाँ छपास रहस फे तनि कम भा चलि जाइ
9: उठा उठा राजीव
10: ज्या हुइला से फे हमार बलरिया जिल्लाक जयनगर म्यालामा चक्रा न उठैला सिते कम नै निकलत बाहिर बाइक धर्ना ठाउँमा छपास र बसे फे यहाँ म्यालामा चाहिँ नि रहेछ
9: ऊ त हो नाराजी कहाँ कहाँ से पिना फलफुल भाँडाकुरी मेकअपको सामान बेचिया वा किनिया मन याद छैन
10: हो त हाम्रो पश्चिम व्यवस्थित बा सफा फेबा आँधर पाँचर किरा मच्छर माछी साँपमा आइकै त छपासकै सफा गर्ल बाट
9: ऊ त हो राजीव अब हाम्रो जयनगर सुन्दर जयनगर हुन पर्छ हुइ
10: अनि रञ्जनी खासमा तु महिन म्याला काक्र नन्दका सामान त तुहाँ कुछ किन्न बाँच्ना सक्छ नि लागत मही
9: खासमा नि हुँ कुमार महिन लक्कै से जो सबले रुवा बेन बजाक साँप नचैलक एकदम मन पर्छ का ओवर्सी म्याला मैले खैलक थिइन् बेन हो जाइन मलाई जुटल बाट पक्क फेरि सबले रुवा बेन बजाक सब नचैके हुँ जाइ यार
10: रहे काका लग्न पिन्छ मै त छट्टियामा सपवा पत्ल पसे हुई डर कलक लक्षा कलक
9: यार कुछ डर मानी परिका हुन् कुमार सबले रुवा कत्रा मजा से सब बहाना मोहल्या खसम मोहित बना कर लगे ना कर चलो का जाए
10: लेनी जाए तो
9: ले जरूर तो हुन् कुमार सबले रुवा बेन का धुन में कत्रा मजा से सब बहाना ना देखी बा आपन सपवा तो डोमिनिया हो जो सुंदा
10: हो डोम सपवा जो हो तर आसिका सपन बेन बजाका सपले र नचेलक मही चाहिँ एकदम दुःख लागत का हेरो बिन्दु सबको जिनवारनका आपन आपन अधिकार अछि नि स्वतन्त्र होक बाँच पाए पर्ता सापन के त आपन अधिकार बाँकी नि हो कि नि हो कहट
9: उता टु छक्कल हो तुम्हार
10: आम्हन आपन मनोरञ्जन का लाग अस्तिका बेन पर दुनमा मस्जिद बनाक और जहाँ मनोरञ्जन देना त एकको फे ठिक नि लागत नि त पातर रूप सापन कफे त आपन विशेषता बाँकी नि त क्षेत्रमा त मुस्खा त बाली नालीका रक्षा गर्छ आम जैविक विविधता हान सन्तुलनमा ल्याउँछ
9: उता महिना फेरि थाहा भएका हुन् कुमार देउटु काटो कलसी आफै सापन लक्ष बनाएको नचेर फेर्न बन्द
10: यी बाटो सही कर दिने अप्न यही बाटोमा आज तिनमै कत्ला कत्ला जेरी खुवाइन्
9: बैठा
10: अनि जेरी खाएको घरवर लाग परिन पानी ऐना सुची बा
9: ओहो हुन् कुमार जेरी पुरी ओटलकारी बात कतरा मिटाइल हरर
10: आप बिन्दु से का बात करछि ई जेरी पुरी ओ तरकारीको होटल जयनगर साधु बाजेको होटल जयनगर बजारमा ओल्ड फेमस बा अनि अत्रा लप टक्कीको बास छैन नै रहि छ
9: उठ हो तर ज्यावत ई साधु बाजे होटलको चाहिँ ना उठै परी कतरा सफा सुधर करेला रह सबको खैना पनि छोप कर लगा माछे बनक निले छ आभन कत्ता ताजा ताजा तरकारी स्वादिलो ओमी तरकारी रिठाको खोइ जेरी कट का बात बटुना हो ना हुँ कुमार
10: आप जेरी पुरी और तरकारी का नाम किला तू खैना हो कि खैना से हो मैं तो खाई थी ना
9: मीठा मीठा तत्लो तत्लो जेरी तो खैलक मज्जा और रसलक कतरा स्वादिलो स्वस्थ कर मैं तो और खाला मेरा इन कल से फिर जेरी खाई
10: मीठा
9: अनि जेरी ना उठेगी उठेगी तुहार थे एक ठो बाटक तो बड़ा तारीफ करना को मन लागल था
10: कहा बात को बिंदु
9: का कलसी ना तमन्ना सपले बा बेन बजाख डोम सब पहान लक्ष बना खा नचै लग देख कत्ता संवेदनशील हो हरेक जिनवार का अधिकार उठा स्वतंत्र हो बाँच पाई पर था गई सुनाबे बड़ा खुशी लागल बा
10: ए हो नै बिन्दु मैं तो छत्तीस से कौन से जिनवारन अपन मनोरंजन कला प्रयोग कलक मन नहीं पड़ा
9: कसिन मजा बिता हूँ कुमार कुमार मैं तो उनसे प्रभावित जो हुई हूँ तर सबले त्रास अजील से कहना अपन बस में
10: उठा पैला जो सुरक्षा का सबको मापदंड पूरा कर रही सबको कटल से बीस न लग कैख सबको सबको दात निकाल रख कहाँ से सबको कटल से बिगार कर सी
9: उठे हो न तर फिर असही का जो सबको सुरक्षा मापदंड पूरा कर सकते सर्पटन से बिना छेटी कम कर सकने दीजिए न
10: हो का दिन से अपन जुत्ता घर से आग जुत्ता में कुछ बाकी कई का हेलर हटकल से वही ना जुत्ता में मुक्त बसला करे सा सबको पटने नहीं रही हो कि नहीं
9: हो निका वो वर्षे तो अनाज भंडार करना कोठा वो काटी घर ना ठाव वो बिला में शाम बैठल रह सकता हमारा होशियार रह पड़ता वो जुत्ता लुगा घर ना से आग के मजा से जांच कर पड़ता जही ने कर सर्पटन से बचा सीख जाये
10: आमद पैरा पूरा क्या टवा में से पैरा तानवे ध्यान दे पड़ता डोंग सिंह सब भिटर नुक्क बैठल सेठ ध्यान घास पल्टी में टुकपक डोंडा में हाथ जगाए नहीं हुई उसे का काल में काल की भाई पर जाति नहीं देख पड़ सेठ वह हुईला कुर से घास काटा बेर ध्यान देकर काट पड़ता
9: हो निका आम साफ नुक सीखना ठाव में से लिया पड़ से वह काम कर पड़ से शब्द अतिरिक्त होशियार भी पड़ता खेतवा झपा ध्यान घास ठाव में से लिया पड़ से नम्मा लठी देखनेगी राजिक समय में बाहर निकल पड़े वहां चर्पी कर जाय पड़ल से जहा थे टर्च लाइट पार्ख वो नम्मा लट्ठी देख के भजाई अपन आज पागल सांप रहा से सांप भगा पाप लट्ठी मदद करता हो कि नहीं हूँ कुमार
10: हो निका बिंदु ले मिली थे खा गई आप लगना हो कि घर हो बिंदु
9: मीठा आप जाए ए मोरे छैला राधने करू पहिले
10: नाही बिंदु पत्रा ठीक बनाए तो पानी आई लागल छत्ता जाएगा अब पानी आए तला से पूरा हिजादारी
9: लेव लेव ओरा गेल का मुन कुमार
10: हेरो ना फिर कहाँ झपास टिकटक बनाई की जाए लगल कटा सांप रह से काटी तरह से स्तंभ भक्त वर्षा बात बतवे लखनी हमरा फिर अंधार पे हुई लाग सकल
9: वो जना मैं आ गई हूँ ली बैठ तू बाइक में
10: बैठ बैठ जाए तो आप
9: बैठा अनि ठहा बा हूँ कुमार आज उस मैडम घुमाई लग गई था यह बने लग चिकन धर परी लाइक करो हो ना
10: हो जाए नहीं उठा
9: अनि सुनो टा जगी मा दिनेश का घर पर था कहीं सर्पटन सक अश्वी लगाए पा उनका स्वास्थ्य में कसिन सुधार हुई थी बाटन करना हाल खबर पूछ जैना को हो कि
10: बात तो ठीक करो थी पर सर्पदम सक केन्द्र से लेखा आये पा भेटनी हुई थी हमारा जाए न तो एक सौ भेटी दिनेश न पानी झमकनाश परी कल से दिनेश का रेनकोट मांग कर रही थी भी
9: बिठा बिठा
8: छोटी रहबेर हुम कुमार न सपकटक विषय में बिन्दु हुम कुमार मेरा जाए बाट बटुल हमारा पशु अधिकार का फे ख्याल कर पुनः संदेश आज नाटक डेलवा का नंबर बुझाई बा पुष्पाजी
11: अपनो बुझाई में मई फे सहमत बाटु एक राजी साप न चिना मन फे सापन का अधिकार ख्याल कर पठा कल से सापन का दसाई मसी अपनो वो दर्शक मुकन बजाई लाग सुरक्षित उपाय फे अपने पठा कनामर तर्क हो मई फे अब राति समय में घर बाहर निस्क पड़ल कल से टर्च लाइटक संग नम्मा लट्ठी लेख पुगे ठक ठक बजेटी न्यांग परी
8: बिन्दु हुमकुमार बाट बटुटी बटुटी अपने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता पो कल नदी पुष्पाजी
11: मई के नही एकराजी हमारा सबको जना सर्वदल से सुरक्षित रहला प्रतिबद्धता कर पर्था ऊह प्रतिबद्धता अनुसार पूर्व तैयारी वा सावधानी उपाय अपने पर्था सपडसलक पाछ उपचार केन्द्र में पुग्ल दिनेश का स्वास्थ्य अवस्था विषय में ठह पाइकलाक बिन्दु होम कुमारक अरुभाग सुन जिन भुलिदिन
8: अत्रा बेला हाम्रो रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देश सुन्तीबाटी
11: सहभागी श्रोता यह विषयवस्तु छलफलकसँग रेडियो कार्यक्रम जीवन सन्देशका का आज यी भाग बसे मै पुष्पा
8: ओमै एकराज बिदा मन्नटी औरो अंकमो सापन कटसाइमसे बस्दा उपाय विषयमो लोगो जानकारी लेख ऐनी चोबाटी आजको लागि बिदा दि नमस्ते
11: यी रेडियो प्रस्तुतिमा विद्वान अतिथि हुक्र बदमिलक उहाँ हुकनक निजी विचार मान्जैने बा ओ नेपाल सर्वदंश रोकथाम परियोजना तर्फसे अभिव्यक्ति हुइलक आधिकारिक विचार दैथ मानने हुई
12: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत
13: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त
14: मै नै जाइ उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु
13: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो यहाँ हेर यी पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डाक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
14: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब ही जाए
15: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमाडौं के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
16: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
17: उए सबै पेपर उर्क सकिया हो
18: सकियो
17: तेरो पर्सनल मोबाइल नम्बर त ब्लक गरी
18: पर्सनल मोबाइल नम्बर त उही दिनै टेलिकम का अफिस जाइबर ब्लक गरी भर आयौ
17: उए बैंकमी
18: बैंकमी
17: हाँ
18: ता केही अद्दु पड्यो भ
17: त्यो त अद्दु पड्न्छ भ आफ्नो मोबाइल नम्बर बदल वा ब्लक भएको आफ्नो बैंकलाई नै जानकारी दिनु पड्न्छ र आफ्नो बैंक खाताको जानकारी औरका हातमी पुग्दो बठे सचेत बनौ
18: सतर्क रहौ ठगी बठेई बचौ
19: सिद्धार्थ बैंक पठेई जनहितमी जारी सन्देश
20: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई

0: को घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोज्ती खोज्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बनाका आन्छे के कतरा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261।
2: लैंगिक हिंसा प्रभावित गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवा का लागि टीकापुर अस्पताल में रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
3: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
4: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
3: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
4: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
5: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584 89213, इमेल ocmcticapur@gmail.com।

0: नेपालमा
1: पाजिना बिखा साँपनको विषयमा सुन। एक ठोरठ गरैचा जोन खास कैख राति समयमा घरभित्र पैठ सेक्छ। यी कटलसे निबठाई फे स्याकत तर कटलक पाछ देही भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्व हुई सेक्छ। औरठ डोम जोन बडा रिसाहा मेरिक रठ निकर फाँट फुले ठ डोम साँप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख सन्ध्या बिहान देख पर्छ। निकर कटलसे फे लक्व हुई सेक्छ ओ औरठ कैली जातक साँप निकर कटल कलसे कटलक भाग सुई था ओ बड़ा कर रसे बठे था रकत फे पाती होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमार देशक तराई सक्कू भूभाग में पा देना बगोपने न फुनका रना बाधे सांप ई सांप दसलक बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा।
2: बर्खा छ्याको अनाज बिक्रिना समयमा सापनका कटाई अथवा दसाईको घटना झ्युर बिना कर्था बैया वो और प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनका बच्चारा नासिबेर सापनका दसाईका घटना झ्युर बिना कर लगपा दे
3: झ्युर जसिन सापनका दसाई हानिकारक नि रहा उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाई पर
4: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैछ पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दिछा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपनी को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी की राम राम। अपने उक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र और नेपाली पात्र मफी सुनती रहबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से मौसम अनुसार के खेती प्रणाली के लिए किसान पूर्व तैयारी कराए पनामत स्वर्गद्वारी टोल विकास संस्था द्वारा सरसफाई मनसुनी वायु के प्रभाव कायम पूर्व से ढेर पश्चिम में मनसुनी वायु के प्रभाव बढ़ी सतर्कता अपना नागरिक मौसम विज्ञान आग्रह और विश्वकप अंतिम स्रो फ्रांस चुनौती दी प्रावज्ञ। टीकापुर नगरपालिका वडा मराट बाढ़ीजन्य विपद के जोखिम रहल वड़ा हो। यहां हरेक वर्ष के बरखा के बेला बढ़ियाईना डुबान और कटान के जोखिम रहल बा। एसंग जंगली जनावर आगलागिलु शीतलहर दशिन विपद के समय समुदाय सामना करती पड़ती रहल बा। यहां बाढ़ीजन्य विपद में से जोगना समुदाय के क्षमता विकास के लिए ढेर प्रयास रहल बा। समुदाय मरलक सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति बाढ़ीजन्य विपद में से जोगना वहां के समता विकास कलबाट यहां कर्णाली दद्या के बढ़ी जोखिम में निम्तेना व यहां खडेरी फेस समस्या रूप में रहलबा। यहां संघ संस्था के मौसम के अनुसार प्रकोप मसे जोगना सिखैना कलबाट मौसम अनुसार के खेती प्रणाली में सखाईपना सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष राजू प्रसाद चौधरी के मागवा। चौधरी के अनुसार पूर्व तैयारी के हिसाब समुदाय ढेहर सचेत ठूलक आवश्यक सर सामान भंडार में ध्यान देना कलक पूर्व सूचना में विश्वास करना प्रयोग करना कार्य बढ़लबा। ओडमा पूर्व सूचना सरंत के प्रयोग मफे मजा हुआ समुदाय में सक्कू नागरिक के मोबाइल नंबर विपद व्यवस्थापन समिति संगवा। वडा नंबर 8 में 3 ठो उच्च घर रहलबा। उच्च घर में सक्कू ठाव नई पुगलक भूलक बुढ़िया मैलक ओह बाहे कुश विद्यालय मफे सेटलक के रूप में प्रयोग करना कर जाए। उपाध्यक्ष रीता चौधरी बढ़िया मसे क्लिक नहीं हुके गर्मी के कारण नागरिक हुकन ढेर समस्या झेलक किसानकर बढ़ी समस्या जुन्हा पर्लक बोटिलोट वहां विपद व्यवस्थापन में सरकार प्राथमिकता देहपना बोटिलोट खोज तथा उद्धार कार्यदल के सदस्य सुमन चौधरी प्राक्टिकल एक्शन ओ बी ग्रुप के विपद मसे जोगना तालीम दिलक क्षमता विकास कलक विपद के बेला अपना सक्रियता बहरलक ओ समुदाय के जोखिम में हरेक जोगना प्रयास में सक्रिय रहना कलक बोटिलोट विपद के बेला मरीन हिलिक नहीं हुके पशु चौपाया व घर पलुआ जनावर के लगते सेल्टर बनना आवश्यक रहक स्थानीय के मागवा। वहां ओडा ओडा में उच्च खाद्यान्न भंडारण घर समेत आवश्यक रहक बुटिलो बाट। टीकापुर नगरपालिका वड़ा नंबर 1 स्थित स्वर्गद्वारी टोल विकास संस्था के सरसफाई कार्यक्रम कलबाट संस्था के ब्लक नंबर 14 के सड़क किनार दाया बाई की झार कटनासंग प्लास्टिक जन्य फोहर उठिलबाट सरसफाई कार्यक्रम कर्णाश्याघ टीकापुर नगरपालिका 1 नंबर वड़ा के वड़ाध्यक्ष मोहन विकास वड़ा के सफाई व विकास में टोल विकास संस्था के योगदान महत्वपूर्ण अलग बोटिलोट टीकापुर नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के प्रमुख बल बहादुर रावल स्थापना के छोट समय में मजा काम करती रहल नागरिक स्वास्थ्य बनीना स्वास्थ्य शाखा टोल विकास संस्था प्रयोग करना बोटिलोट टीकापुर नगरपालिका के जनस्वास्थ्य अधिकृत एन्टोन बजगा यहां पानी शुद्धिकरण व सरसफाई के बारे में जानकारी दिल रही। संस्था के अध्यक्ष ज्ञानु थापा के अध्यक्षता में हुलक कार्यक्रम के संचालन सचिव महेन्द्र गिरी कर्ला सफी स्वागत को सदस्य कौशल्य खनाल भंडारी कल्लाट कार्यक्रम में नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकृत केवल सिंह सार्की टीकापुर नगरपालिका के वड़ा नंबर 1 के नागरिक आधारभूत सेवा दिना मेडिकल अधिकृत के नेतृत्व में टीकापुर नगर समिति के संघ खुलक आधारभूत शहरी स्वास्थ्य केन्द्र तथा सिकल सेल उपचार केन्द्र में साउन 1 गति से सेवा लेना सक्कू नागरिक अनुरोध कलबाट। देशभर मनसून वायु के प्रभाव कायम रहलक। अब सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश में साधन्त्रया बद्री लगलक तथा मध्य प्रदेश में आंशिक बद्री रहनावा।
संग बागमती कोशी लुम्बिनी प्रदेश के कुछ ठाउँमा मेगर्जन ओचट्याङ सहित मध्यम वर्षा होटिरहल महाशाखा जनिलबा महाशाखा के अनुसार आज रात के कोशी बागमती गण्डकी प्रदेश के हिमाली क्षेत्र के कुछ ठाउँ तथा कर्णाली सुदूरपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली क्षेत्र के कुछ ठाउँमा मेगर्जन ओचट्याङ सहित मध्यम वर्षा तथा हिमपात के सम्भावना बा संग पहाड़ी तराई के क्षेत्र के कुछ ठाउँमा मेगर्जन ओचट्याङ सहित मध्यम वर्षा हुइसक्ना बा कुछ ठाउँमा भारी वर्षा के फेर सम्भावना रलक मौसमविद बोटिलोबाट आज रात के कालसम्म फेर सुदूरपश्चिम के पहाड़ी तराई के कुछ भागमा वर्षा के सम्भावना रहलबा परौसे फेर वर्षा कम हुना हुइसक्ना देखलक तर धेर गर्मी के सम्भावना कम रलक मौसमविद संजीव अधिकारी जानकारी देलबाट पाछक समय नेपाल के पूर्वी भागमा से पश्चिमी भागमा मनसून सक्रिय रहलक पूर्व के तुलनामा पश्चिम नेपालमा वर्षा बढ़ती हुटी रहलबा आगामी कुछ दिनसम्म फेरि पूर्व के तुलनामा पश्चिम नेपालमा वर्षा के सम्भावना बढ़ी देखलक सतर्कता अपनिना समेत मौसमविद अधिकारी नागरिक हुकन आग्रह गर्नबाट खोज खबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीका प्रएफएम।

0: जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
1: के छ त विकल्प?
0: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
0: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
0: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423759।
3: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा। जनकपुरमा पोखरातर्फ ऐतिकलक नाछ ख 7457 यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुलक 9 जना घाइते हुलबाट हेटौडा वीरगंज सड़क खण्डकी हेटौडा उपमहानगरपालिका वड़ा नम्बर 15 के रातो माटे चेक प्वाइन्ट लगह बस दुर्घटना हुलबा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के अनुसार दुर्घटनामा पर्लक यात्रुहुकन स्थानीय प्रहरी उद्धार कला रही गम्भीर घाइते 9 जना थप उपचारके लागि हेटौडा अस्पताल मल्लबाट बसमा 35 जना यात्रुहुक सवार अलग अन्य यात्रुहुक सामान्य अलग। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक माधव प्रसाद काफले जानकारी दिलबाट बच्चालक धनुषाके जनकपुर उपमहा नगरपालिका के 8 बैठना वर्ष 50 के धनीराम विश्वकर्मा प्रहरी अनुसंधान के लाख नियंत्रण मल्लक जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर जने लवा। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल मंत्रालय की जिम्मेवारी संभालक 48 मुख्य उपलब्धि हासिल हुआ। मंत्रालय के सही दिन के प्रमुख कार्य सार्वजनिक करते मेयर मोर किता मोबाइल एप सार्वजनिक करके नक्शा प्रिंट से फील्ड बुक उत्तर समके का मोबाइल में से करा से दिना जाने लगा। मंत्रालय के अनुसार उक्त एफ मार्फत हालसम 4779 संस्थागत प्रयोगकर्ता तैयार हुलक सेवा प्रभाव हुटी रहा। भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोवासी 29 थौ लाल पूर्जा वितरण करगी बितलक 100 दिन में सहकारी 1754 छोट बचतकर्ता के रू 2,63,00,000 रकम फिर्ता कलक जन मंत्रालय के अनुसार ओह विधि में 154 जना ऋण मसे रू 4,32,82,310 रकम ऋणी असूली हुआ। मंत्रालय के अनुसार ओह विधि में 223 रिक्त तथा निमित्त भरमरलक पालिका में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठेलक उपलब्धि सार्वजनिक कलबाट हिंसे अविधि में 6 स्थानीय तहमसे नापियो मालपोत सम्बन्ध सेवा की शुरूआत कलबाट सकू कर्मचारी ट्रेड यूनियन के व्यवस्था हटेलक मुख्य उपलब्धि के रूप में मंत्रालय चित्र कलबा बालुटा स्थित प्रधानमंत्री निवास रलक जगह नेपाल सरकार नाम लेलक मालपोत नापी कारण में सेवाग्राही बाहेक अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश में रोक लगेलक 3 प्रदेश 9 बागमती गण्डकी मध्ये शिरोमणि निजामती अस्पताल सेवा विस्तार सिन्दरबाट परिसरमा निजामती अस्पताल के सेवा इकाई स्थापना गर्के सेवा शुरू कर्मचारी के सर्व अनिवार्य अनलाइन प्रणाली मार्फत करना व्यवस्था किताब खाना के पूर्ण डिजिटल प्रणाली शुरू निजामती कर्मचारी के विवरण अनलाइन में सेवा अत्याधिक कर सेकना व्यवस्था फेकर दीवा। मंत्रालय के अनुसार अध्ययन तथा असाधारण विधामा जाके सम्पर्क में नयलक 2 जना तथा विदेशी आवासीय अनुमति लेलबा 6 जना कर्मचारी निजामती सेवामा अज्ञ ठहरना करके कार्यवाही करलक जनिलेबा। खोज खबरमा फेरि विश्राम पाछ फेरि सुन्तिर विश्राम मुदायक रेडियो।

0: टिका प्रफ्युम
1: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नि करत का कहिना हो का
1: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ र घूम जाए तो था पाए
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541 4326
3: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा बच्चादेखि बुढासम्म टाउकोदेखि घुँडासम्मको उपचार
4: टिचिङ हस्पिटलबाट एमडी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फ्यामिली फिजिसियन डाक्टर सरोज खनालबाट बिरामीको जाँच तथा उपचार हुँदैछ
3: आरोग्य मेडिकलमा पाइने सेवाहरू
4: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थाइराइड दम सीओपीडी
3: नवजात शिशुदेखि वृद्धसम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
4: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
3: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
4: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
3: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
4: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ
3: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
4: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म
3: सम्पर्क फोन नम्बर 9868 80 0008 र 9825 63 77 72
5: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
6: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
7: विश्राम पाछा फिर से स्वागत बा आप खेल खबर विश्वकप फुटबल के अन्तिम सोह्र चरण शुरू हुती कलक शनिबार फिलाडेल्फिया महिना खेलमा फ्रान्स प्राज्ञकी विरूद्ध खेल अत्यधिक गर्मी के सामना कर पर्ना हुई बाई स्थानीय समय के अनुसार संजय 5 बजे लिंकन फाइनल सीएल फील्ड में हुना खेल में तापक्रम करीब 38 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्न अनुमान अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा क्लब भीषण गर्मी के चेतावनी के बीच प्रतियोगिता खिलाड़ी के शारीरिक अवस्था प्रमुख चुनौती के रूप में देखी बा फ्रांस के प्रशिक्षक डीडीआर डेस च्याम्प्स के मौसम सबको टोली के लाग सामना चुनौती हुना बोटेलोबाट यहाँबाट आफ्नो ध्यान तरफ पर्ना तर सबको टोली केलाग अवस्था समूहको के बोटेलोबाट फ्रान्स के 4 खेलमा 13 गोल कर्ती प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर्ती दलबाट पारोग्य के प्रशिक्षक गुस्ताभो अल्फारोले फ्रान्ससँग विद्युतीय आँधी के संख्यादिति एक आक्रमक क्षमता मुख्य खतरा के रूपमा टिम्पनी कलबाट उहाँ के गर्मी के चुनौती स्वीकार कलसफे आफ्नो टोली मह अव्यवस्थाहरूलाई दावी कलबाट प्राज्ञा के अन्तिम 32 चरणमा जर्मनी के ऊपर जीत निकटी अन्तिम 16मा स्थान बनेलबाट शनिबार के अरोखिनमा क्यानाडा के ह्युस्टनमा 2022 विश्वकप सेमी फाइनलिस्ट मोरोक्कोसँग प्रतिस्पर्धा कर्णाहुलबाट दक्षिण अफ्रिका पराजित गर्दै अन्तिम 16मा पुग्लक क्यानाडा उच्च आत्मविश्वासमा रहलबा क्यानाडा के प्रशिक्षक जीसी मार्स मोरक्को कमजोरी विहीन टोली कति उच्च स्तरीय प्रदर्शन आवश्यक पर्ना बोटिलोबाट इहर मोरक्को का प्रशिक्षक मोहम्मद वहाबेली नेदरल्याण्ड विरूद्ध के जित हने विगत के बार कति वा प्रत्येक खेल नयाँ चुनौती हुलक बोटिलोबाट मोरक्को वा क्यानाडा बीच के भिडन्त यह चरण के महत्वपूर्ण खेल के रूपमा हेरगिल्बा ओहो विजेता के क्वार्टर फाइनल प्रवेश नजिक पुग्न हुल्बा केही समाचारसँग खोज खबर भयो जेनासे पहिले खबरकै मुख्य शीर्षक फेर सेक्छौ। मौसम अनुसारकै खेती प्रणालीकै लागि किसानमा पूर्व तयारी गर प्रणामा स्वर्गद्वारी टोल विकास तथा दोरा सरसफाई मनसुनी बाईके प्रभाव कायममा पूर्व पश्चिममा मनसुनी बाईके प्रभाव बढ़ी सतर्कता अपना नागरिकमा मौसम विज्ञ आग्रह विश्वकप अन्तिम स्वर फ्रान्ससँग चुनौती दिती प्राज्ञ लिता बक्ला खोज खबर रहा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद लिटा बक्ला खोज खबर से मई सीता चौधरी विदा हेटु एगर पाछा छ बजे के खोज खबर सुन सी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुन्ती रवि राम राम
0: ए सन्त्यकी आमा पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
8: आफ्ना कान्छा भाइको बे नगइकन पन भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँचि गयो
0: यतिका लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनेको बरु अहिलै जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याक्ट्री बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
8: आज त सन्त्यका बाले मनकै कुरो हर्यो हो त बाई जाउँ
9: सामुएल ज्वेलर्स सुनचादीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचादी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9864412088 9846349261

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लम्की कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सेकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी सन्देश।
2: प्लस टू उत्तीर्ण सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई नास्ट कलेज का तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। उच्च जीवन स्तर निर्माण का लागि निर्णायक क्षण यही हो।
3: विगत 27 वर्षदेखि सेवारत QAA प्राप्त यस संस्थाका रोजगार उन्मुख कार्यक्रमहरू बीई कम्प्युटर बीसीए बीबीए बीई सिभिल का साथै एमबीए कार्यक्रममा सुनिश्चित उच्च जीवन स्तर निर्माणार्थ भर्ना फारम खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। भर्ना फारम 2083 असार 32 गते दिउँसो 3 बजेसम्म बुझाइ सक्नुहुन अनुरोध छ। प्रवेश परीक्षा 2083 श्रावण 1 गते 10 बजे। साथै अनलाइन फारम nas.edu.np मा उपलब्ध छ।
2: नेशनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नास उत्तर बेहडी 4 धनगढी फोन नम्बर 091-523-12 र 523-949।

बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: काती रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज इठा का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटी लो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ान लिख में का हुई थी जरम भर भर भर आई राहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक थो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गया झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस का टस बाटी ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकटुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

चुरे जोगाऊ पानी का मुहान बचाऊ वन विनाश र अवैध उत्खनन रोकौ हरियाली बढ़ाऊ चुरेको संरक्षण हाम्रो दायित्व हो समृद्ध र सुरक्षित भविष्यको आधार हो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समिति कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई लंकी कैलालीद्वारा जनहितमा जारी सन्देश

महाराज परीक्षित नारायण को नाम संकीर्तन को प्रभाव बताए हजुरलाई। अब उपरांत अब अजामिल नाम